बात ये सब उस कर पहला साथ है ने से बात ये सब उस कर पहला साथ है उसे वो रे तो ने से बात उसे वो रे तो ये सब उस कर पहला साथ है उसे वो रे तो ने से बात ये सब उस कर पहला साथ है।